साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी।

न्यूज़ में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

जगह नहीं और डायरी में, ये एस्ट्रे पूरी भर गई है, भरी हुई है जले बुझे अधकहे ख्यालों की राखबू से, ख्याल पूरी तरह से जो कि जले नहीं थे।

0: The Sunrise Radio Traffic and Travel Update, brought to you by GDK. Hungry? Go large. Donor boxes now available in regular and large. More flavour packed in. GDK. Kebabs done right.
1: The M25 clockwise between junctions 31 and 1A. Broken down vehicle, one lane closed, delays of 50 minutes. That's the M25 clockwise between junctions 31 and 1A.
0: The Sunrise Radio Traffic and Travel Update, brought to you by GDK. Hungry? Go large. Donor boxes now available in regular and large. Big box energy. More flavour packed in. GDK. Kebabs done right.
1: Vicky in Twickenham, thank you for your beautiful message. Transporting you back to the 50s. To the magic of Raj Kapoor and Nargis. Manna De aur Lata Ji ki awaaz mein ye gaana. ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं उठा धीरे धीरे ये चांद प्यारा प्यारा एंड शी सेज क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा जहां भी आप सुन रहे हैं जो भी इस वक्त कर रहे हैं होप यू हैविंग अ ब्यूटीफुल थर्सडे होप यू आर रेडी फॉर एन अमेजिंग कॉम्पिटिशन इन द नेक्स्ट आवर ऑफ कोर्स

0: quality foods.
1: हमारी लव स्टोरी तो लेजेंडरी बन गई। इस जन्म
2: का लेजेंडरी लव स्टोरीज की ही तो एंडिंग ट्रैजिक होती है।
3: From the makers of Rocky और Rani की प्रेम कहानी, Dharma Productions presents Chand Mera Dil. Watch Ananya Pandey and Lakshya in Chand Mera Dil, coming to cinemas on May 22nd.
4: Chand Mera Dil, Chand Mera Dil.
5: हिमालय कार्पेट्स की मेगा बैंक हॉलीडे सेल शुरू हो चुकी है। 500 से ज्यादा कार्पेट रोल्स 30% तक रिड्यूस्ड, तमाम रूम साइज रेमिनेंट्स पर अप टू 40% ऑफ, वाइनल्स और रग्स सब पर रिडक्शंस। हिमालय कार्पेट्स की बैंक हॉलीडे सेल इज नाउ ऑन। साउथ हॉल ब्रांच में तशरीफ लाइए या विजिट himalayacarpets.com।
6: Online, on app, and here.
7: Play Sunrise Radio.
6: This is Sunrise News.
7: From the Sky News Centre at 9. New guidance confirms toilets should be used on the basis of biological sex. A code covers a range of scenarios, including competitive sport and hospital wards, following a Supreme Court ruling last year on the legal definition of a woman. Trans activists warn the advice has an

न्यूज़ में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।